जहां से लय बढ़ती है चार बार का रिदम, उसके बाद जो एक दो दो लाइन हर बार आ जाती है, वन टू थ्री फोर।

तू सूली पर चढ़ जाएगा, मैं रस्सी को कटवाऊंगा। तुम रस्सी को कटवाओगे

0: पर्दा अकल से ऐसा पड़ जाता है।
1: जवानी आए जाए कभी ना साथ निभाए, बुढ़ापा ऐसा साथी जो आके फिर ना जाए। जो भी बात सुनाऊं मैं तुमको वो ही सुन ले तू सारे जहां से, फिर भी यकीन आता हो तो पूछ ले, ओ पूछ ले, अरे पूछ ले अपनी माँ से। ओ बरखुरदार जी,
2: Experience a musical incarnation. Radio Jagriti 102.7 FM.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

निभाए, बुढ़ापा ऐसा साथी जो आगे फिर ना जाए। और जो भी बात सुनाऊं मैं तुमको वो ही सुन ले तू सारे जहां से, फिर भी यकीन आता हो तो पूछ ले, ओ पूछ ले, अरे पूछ ले अपनी माँ से। ओ

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

दोस्तों सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: ऐसा पड़ जाता है,
1: ऐसा पड़ जाता है।
0: जवानी आए जाए कभी ना साथ निभाए, बुढ़ापा ऐसा साथी जो आके फिर ना जाए। और जो भी बात सुनाऊं मैं तुमको वो ही सुन ले तू सारे जहां से, फिर भी यकीन आता हो तो पूछ ले, ओ पूछ ले, अरे पूछ ले अपनी माँ से। ओ बरखुरदार जी, ओए मेरे पुत्र जी,
2: बोलो मेरे पापा जी,
0: बुजुर्गों से कभी ना टकराना
2: ना।

सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओ, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।